0: सेफ्टी ऑफिसर म्हणून गोदरेज अँड बॉईज या कंपनीमध्ये कार्यरत आहेत. तेव्हा मोहसिन यांची जर्नी कशी आहे ते आपण जाणून घेऊयात. मोहसिनजी, मी तुमचं स्वागत करतो रेडिओ त्यांनामध्ये.
1: थँक्यू सर.
0: जसं मी आत्ता एक इंट्रोडक्शन करून दिलं आणि आपलं जसं थोडंसं अगोदर मुलाखतीच्या अगोदर पण बोलणं झालं की मूळतः तुम्ही धाराशिव उस्मानाबादचेच आहात आणि साधारणतः 2014 तुम्ही पासआउट झालेला आहात.
1: हो.
0: तर आता जवळपास एक 10 झालेली आहेत तुम्हाला पासआउट होऊन.
1: येस येस.
0: तर ह्या 10 कधी कॉलेजवर येणं झालं होतं?
1: कॉलेजवर मोस्टली फार कमी झाला असं नाही, कारण जॉबमुळं टाईम भेटत नव्हता. आणि असं कधी पण आलो आपण धाराशिवमध्ये तर आपण मॅक्झिमम ट्राय करतो की कॉलेजला एकदा यू व्हिजिट करू, कारण फारशी डेव्हलपमेंट झालेली आहे कॉलेजमध्ये. नवीन नवीन बिल्डिंग्स, स्पेशली प्लेग्राउंड आहे त्याचे डेव्हलपमेंट झालेलं आहे आणि वेगवेगळे नवीन नवीन सर दिसतात. बाकी पूर्ण फॅसिलिटी चेंज झालेले आहेत.
0: रेडिओ तेरणा
1: आहे आणि बाकी असं म्हणलं तर भरपूर गोष्टी आहेत की जे चांगल्या प्रकारे डेव्हलपमेंट झाले. म्हणजे आम्हाला जसं वाटत होतं की असं असं होऊ ते झालेलं आहे. म्हणजे आता प्रत्यक्षात आम्ही बघतो की हे गोष्टी दिसून येतात आणि हे बघून फार आनंद होतो.
0: ओके.
1: की आपलं कॉलेज
0: अगर आप कंफर्टेबल हिंदी में तो हिंदी में बात सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं.
1: ये देख के बहुत अच्छा दिखता है कि अभी कॉलेज बहुत अच्छा
0: चेंज
1: हो गया है और आगे बढ़ रहा है.
0: ऐसे कैंपस में आके गए थे कि बाहर से बाहर देख के जाते थे?
1: कैंपस में ऐसा मोस्टली एक दो बार आया हूँ, लेकिन बाहर से ऐसा विजिट ज्यादा होता है.
0: अच्छा, यानी दिल की धड़कने बढ़ती होंगी ऐसे. हाँ, सामने से अपने हाईवे से पुल के सामने
1: गाड़ी पे जाते तो फिर ब्रेक मारते देखते कॉलेज को. अच्छा. उसके बाद आगे ये होता है कि एक कॉलेज को देखना भी एक रहता है कि एक अठवन.
0: हाँ, पुरानी यादें
1: जो भी है आपके सामने आ जाती है कि कॉलेज ऐसा.
0: कैसा था उस वक्त का वक्त, यानी 2014 पास आउट हो गया, 2010 में आपने शायद एडमिशन लिया था.
1: हाँ, 10 में पास एडमिशन लिया था मैंने. मैकेनिकल से मेरा ये हुआ था और मैकेनिकल में टीचर्स बहुत ज़बरदस्त थे हमारे सिखाने के लिए. फर्स्ट ईयर हमको पूरा एकदम चैलेंजिंग, एकदम नया, और जैसा हम सुने थे वैसे ही था. पूरा स्ट्रिक्ट था, मतलब पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई कंपलसरी ये. और बैचेस बहुत अच्छे थे कि ऐसा सब सर जो थे एक पैशनेट थे सिखाने के वास्ते. नए बच्चे थे और हम लोग को भी उत्साह था.
0: OMS थे क्या उस वक्त? आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट थे?
1: हाँ, आउट ऑफ महाराष्ट्र के बहुत सारे थे स्टूडेंट्स. मैक्सिमम मेरे बैच में है ना, नहीं भी बोले तो 16-17 बच्चे है ना आउट ऑफ के थे. मुंबई के भी थे और है ना इधर साउथ के भी एक दो बच्चे थे. नॉर्थ के है ना 16-17 के ऊपर बच्चे थे.
0: अच्छा,
1: तो अच्छी बैच थी, मतलब मिली जुली बैच थी पूरी. लोकली थे, लोकली 20-25 बच्चे थे कि लोकल से आते थे. और बाजू के गांव से, मतलब लातूर से, बीड से, उस टाइम के भी बच्चे थे. तो हमारी दो बैच हुई थी, ए और बी.
0: अच्छा.
1: हाँ, और है ना सी भी थी बाद में, लेकिन सी को ये नहीं हुआ. फर्स्ट ईयर की बात है. लेकिन बाद में लेटर ऑन एज मैकेनिकल अलग हो गया.
0: अच्छा.
1: फिर उसके बाद बाकी के बैचेस अलग हो गए. तो सब है ना फिर अलग अलग फिर ये हुआ. तो बैचेस अच्छे थे और अभी भी सब लोग कॉन्टेक्ट में, ऐसा नहीं कि कॉन्टेक्ट में नहीं
0: मुझे
1: है.
0: तो आपके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है कि आप यादों में वहीं पे कहीं पे तो घूम रहे शायद. 2010 से लेकर 14
1: से नहीं, कॉलेज आए तो एक ये रहता है ना, एक कॉलेज देखे तो वो याद आ जाती है कि कॉलेज में था. अच्छा. ऐसे प्रैक्टिकल्स होते थे, ये होते थे, एग्जाम्स होते थे. एग्जाम के टाइम का टेंशन अलग.
0: अच्छा.
1: बाकी का सब ये रहता है, एक मतलब हर इंसान को एक
0: वो
1: याद में आ जाता है. और याद नहीं रही तो फिर वो
0: पिटारा खुल गया तो बहुत सारी चीज
1: बाहर आती है. वैसे बैच हमारी बहुत डिसेंट थी, ऐसा ये नहीं था कि कुछ ज्यादा ये था. डिसेंट बैच थी और सब पढ़ाई वाले थे बच्चे, तो मजा भी आया. और पास आउट होने के बाद तो क्या, अभी थोड़े दिन मिलते रहे लोग.
0: अच्छा अच्छा. अब अभी हर कोई अपने अपने काम में.
1: हाँ, अब क्या, अब 10 हो गए, कोई शादी हो गया किसी का, किसी के किसी इसमें लाइफ में लग गए.
0: अच्छा अच्छा.
1: जॉब में वो टाइम नहीं मिलता है.
0: अच्छा, तो जैसे आपने पहले कहा था कि आपकी पढ़ाई लिखाई तो पूरी यहाँ पे हो गई धाराशिव में.
1: जी, धाराशिव
0: स्कूल में आपने कहा था कि 12th में शायद आप, तो आपको यही तेरना इंजीनियरिंग कॉलेज में आना था या कुछ अलग सोचा हुआ था?
1: रीजन ये था

0: कि मेरे पिताजी का है ना मतलब है ना कंडीशन उतनी ये नहीं थी, फैमिली कंडीशन मेरी बहुत बैकवर्ड में मतलब बहुत कम थी, आर्थिक कंडीशन है ना जो रहती है फाइनेंशियल तो कम थी। बेसिकली मेरे पिताजी है ना टेलर है, और है ना वही रीज़न था कि मुझे है ना खुद है ना खुद से आगे बढ़ना था, और इधर ही पास में रहूँगा तो बाकी खर्चे भी कम आएंगे, और लोकली अच्छा कॉलेज है, दो लोग बाहर से आते इधर पढ़ाई करने के लिए। तो पिताजी का भी कहना ये था कि सब बाहर से इधर आ रहे, तू इधर से बाहर क्यों जाता
1: क्यों
0: है।
1: जाता है?
0: तो वो रीज़न के लिए है ना मेरे को पिताजी ने बोले कि इधर ही प्रेफरेंस दे, और इधर है ना बहुत सारे लोग थे पिताजी के पहचान के कि वो लोग भी है ना मुझे बोले कि अरे कॉलेज अच्छा है, पढ़ाने वाले सर अच्छे, पुराने सर है, अच्छा मेन तो क्या है कहाँ पे भी गए तो सीखना ही है, मैकेनिकल जाएंगे तो कुछ अलग नहीं सिखाएंगे कोई, लेकिन इधर के सर पुराने हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। तो यही था कि गेस सबका सजेशन यही था कि इधर ही लो, और उस टाइम 12th पास अपने को क्या समझ में आता है ज़्यादा, तो जो बड़े बोले वो हिसाब से हम चले
1: अच्छा
0: और लिए, और डैट वन इज़ गुड क्योंकि है ना वो डिसीजन भी अच्छा था और आगे उसमें ग्रोथ हो गई, कुछ सीखने मिला इसके लिए, तो आज अच्छे कंपनी में कर रहे,
1: अच्छा
0: अगर सीखने नहीं मिलता तो थोड़ी अच्छे कंपनी पे हम काम करते हैं, ये फायदा हुआ है, ऐसा नहीं
1: नहीं यानी
0: कि
1: तेरना कॉलेज का चॉइस करना
0: बहुत
1: सही
0: सही।
1: सही रहा, ठीक
0: हाँ
1: रहा, खर्चा भी उतना
0: क्योंकि
1: ज्यादा नहीं होगा, पढ़ाई अच्छी हो
0: पढ़ाई
1: गई।
0: भी अच्छी हो गई, अच्छे टीचर्स मिले सिखाने के वास्ते वॉट एवर, लेकिन जो भी है ये चीज़ के लिए कि इधर एडमिशन का जो डिसीजन था सीखने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए और ख़ुद को डेवलपमेंट करने के लिए, ये चीज़ के लिए है ना बहुत बेस्ट रहा एज़ पर मेरा जो भी है, मेरा मेरा खुद के ऊपर जो जैसा करेंगे हर एक का अलग रहता सजेशन, बट मेरा ये जो सजेशन है कि है ना जहाँ यहाँ पे एडमिशन लेना मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि मुझे नई नई चीज़ पता चली और सिखाने वाले सर भी थे, अच्छे अच्छे से सिखाते थे, तो एक फ़ायदा हुआ, ग्रोथ हो गई, खुद की मेंटली ग्रोथ हुई, फिजिकल तो होती रहती है लेकिन मेंटली भी बेस्ट रहती है, वो मेंटली है ना कोई बाद में कोई नहीं कर सकता है, तो मेंटली ग्रोथ होना ये बेस्ट था, इसके लिए चॉइस तो बहुत सही रहा इधर
1: अच्छा,
0: लेना।
1: तो जैसे आपने 4 साल यहाँ पे पढ़ाई आपकी अच्छी हो गई है ऐसा आपका कहना है, तो ये कैसा रहा? मतलब जैसे कि आउट ऑफ महाराष्ट्र के भी स्टूडेंट थे, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो आपकी पढ़ाई कैसे चलती थी फिर यहाँ पे, यानी आपका करिकुलम 4 साल का?
0: पढ़ाई बैचेस थे, डिफरेंट बैचेस थे और पढ़ाई करने का एक सिस्टम
1: आपने
0: था।
1: ऐसा भी कहा था कि डिसेंट बैच है, तो कैसे पढ़ाई होती थी आपकी सभी लोगों के साथ? नहीं,
0: डिसेंट
1: डिसेंट
0: बैच
1: ये
0: मतलब
1: वर्ड बहुत ऐसा प्रोमिनेंटली यूज किया है, इसलिए मैं पूछ रहा
0: डिसेंट बैच ये था कि है ना कोई किसी केस में नहीं था,
1: हूं।
0: मतलब है ना जो रहता है आजकल के स्टूडेंट्स जो अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहते हैं
1: ज्यादा
0: कॉलेज
1: उसमें
0: छोड़
1: होते
0: के अदर
1: हैं।
0: एक्टिविटीज़ में, तो वैसा नहीं था हमारे बैच में, सब लोग है ना एक दूसरे को पकड़ के है ना पढ़ाई के लिए लेके जाते थे, मतलब है ना बैचेस है ना सब लोग कंटिन्यू रेगुलर कॉलेज अटेम्प्ट करते थे, सब लोग है ना एक दूसरे को पढ़ाई में मदद करते थे, इसके लिए भी डिसेंट बोला हूँ मैं कि मैक्सिमम क्या सब लोग है ना लेक्चर्स अटेम्प्ट करते थे, कुछ होंगे हमने पैसा भरा है कॉलेज के लिए
1: तो हमको ये करना है।
0: हमको है ना जाना है अटेम्प्ट करना है, भले कुछ समझ में आओ मत आओ
1: अच्छा,
0: जाना है उधर बैठना है, ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में था,
1: ओके।
0: और एक दूसरे को हम ये चीज़ के लिए मोटिवेट करते थे कि अरे अपन कॉलेज के लिए पैसा भरा है, पिताजी ने पैसा भरा है, घर से पैसा आया है, तो ये चीज़ के लिए मुझे बहुत डिसेंट लगता है। मैं कुछ फ्रेंड्स थे और अच्छे अच्छे आप सही जगह पे ही है, क्यों बोले तो उन्होंने टाइम सही जगह पे लाला इसके लिए आज है ना उनको फ़ायदा है, गलत टाइम यूज़ नहीं किया कि कॉलेज का टाइम वेस्ट किया, तो ये फ़ायदा हुआ है, इसके लिए डिसेंट बोला हूँ कि है ना उन्होंने हमको समझाया, मतलब हमारे साथ की जो टीम थी तो ये लोग हम एक दूसरे को मोटिवेट करते थे और अच्छी चीज़ के लिए सब लोग एक दूसरे को है ना सपोर्ट करते थे, इसके लिए डिसेंट बोला हूँ मैं,
1: अच्छा, ये
0: नहीं तो
1: बहुत
0: आज
1: जरूरी है,
0: हाँ वो ज़रूरी है और ग्रोथ के लिए यही ज़रूरी रहता कि आपका टाइम
1: लेकिन
0: सही
1: आज
0: लगना,
1: दिखाई
0: हाँ
1: नहीं देता है।
0: आज दिखाई नहीं देता, आज क्या करते कॉलेज बंक करना है ये करना है, तो लोग ज़्यादा ये करते उसको प्रेफर करते, और टाइम जाने के बाद समझ में आता कि अपन टाइम वेस्ट किया, अपन 4 साल चले गए अपने 4 साल के, अपने इतने सारे पैसे कॉलेज को दिए और अपने को जो आउटपुट चाहिए था वो हासिल नहीं किया, क्यों कॉलेज बंक किया तो कहाँ से हाल ये हो सकता उसका, तो ये चीज़ था कि हमारे लोग क्या थे, हम नहीं भी आ रहे तो कॉल करके बोलते थे कॉलेज ले जाए अपने ला, तो हम लोग एक दूसरे के साथ सब कनेक्ट होते थे और बाकी की चीज़ अदर एक्टिविटी नहीं थी कुछ, है ना, बाकी का चीज़ कहीं सिर्फ एक था कंसेप्ट कि सबको साथ में पढ़ना है, सबको साथ में आगे बढ़ना है, ये कंसेप्ट था। इसके लिए मेरी जो बैच है 14 तक की जो बैच थी हमारे 10-14 वो अच्छी डिसेंट बैच थी। अदर एक्टिविटी में भी लोग थे कि ऐसा स्पोर्ट्स में थे, इसमें थे, लेकिन ये बैच बहुत अच्छी थी, क्रिएटिव थी, नए नए चीज़ें ना खुद से ये करती थी, डेवलप करती थी इंजिनियरिंग्स में।
1: तर मित्रांनो, आपण जी चर्चा करत आहोत ते मोहसिन शेख यांच्याशी, तर ते 2014 चे मेकॅनिकल ब्रँचमधून पासआउट आहेत, सध्या मुंबई घनसोळी येथे सेफ्टी ऑफिसर म्हणून गोदरेज अँड बॉईज या कंपनीमध्ये कार्यरत आहेत। तो मोहसिन भाई, ये आप 2014 में पास आउट होने के बाद आपको मतलब उसी वक्त नौकरी मिल गई, जॉब मिल गया, कैसा हो गया था?
0: असल में मुझे जॉब उस टाइम नहीं मिला था। मैंने क्या किया था, कोर्स किया था, सब लोग हैदराबाद भाग रहे थे, पहले मुंबई पुणे गए थे, बट पुणे में उस टाइम है ना फीस बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग क्या किए थे कि कुछ हम लोग जो बैचमेंट थे तो सब लोग ने क्या किया था कि हमारा कंसेप्ट क्लियर था कि हम HVAC में करेंगे या फिर है ना इसमें कोर्सेज थे उधर, तो उधर जाके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है उधर इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उसमें जाके हम है ना कोर्स करेंगे ये सोचे थे। और हमने वो सब लोग ने वही किया कि हैदराबाद में गए, वहाँ पे विद्यानगर बोल के एक है इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, तो ये भारत सरकार की तरफ से है ना जो सर्टिफिकेशन रहते हैं वो है ना देते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होती है 15-20 दिन की ट्रेनिंग होती है, और ये विद्यानगर में है इंस्टीट्यूट, अच्छा इंस्टीट्यूट है, फीस ज़्यादा नहीं लगती है, कुछ नहीं लगती है, 2-3 हज़ार 4 हज़ार, और पढ़ाते भी अच्छा ही है। तो उधर जाके है ना, मतलब हमारे बैच में क्या था, सब एक दूसरे को है ना किसी को कुछ पता चल गया तो एक दूसरे को बोलते, एक हेल्प करते थे, तो ये चीज़ का फायदा हुआ। अभी मुझे भी पता नहीं था कि करना क्या है, तो मैक्सिमम सब ब्लैंक ही रहते हैं कि अभी जो मिला वो करेंगे। तो हम लोग उधर जाके कोर्स किए, और कोर्स करने के बाद है ना मुझे एक जॉब में भी मिल गई, जॉब हो गया उसका, तो उससे ही है ना मुझे एक दूसरे जो थे मेरे सीनियर गाइडेंस करके है ना मुझे बोले कि तुम इसमें आओ, सेफ्टी में आओ, और मैं सेफ्टी में घुसा रोहन बिल्डर में, फिर उसके बाद दूसरा कंपनी है, स्विच करते रहे। अभी क्या, अभी एक कंपनी में ज़्यादा देर मतलब रुका हूँ, 2.5 साल 3 साल ऐसा रुक के है ना अभी चेंज किया हूँ, अभी चौथी कंपनी है मेरी गोदरेज एंड बॉयज़ में, गोदरेज एंड बॉयज़ के भी इंटरव्यू अच्छे रहते, तो हुआ है उसमें।
1: और ये गोदरेज एंड बॉयज में सेफ्टी ऑफिसर है, ये आपका प्रोफाइल कैसा रहता है, मतलब काम का तरीका क्या है, क्या होता क्या है एक्चुअली इसमें?
0: ओरिजिनल में सेफ्टी ऑफिसर एक मुझे भी पता नहीं था, जब मैं है ना लगा हूँ मुझे भी लगा था कि भाई सेफ्टी ऑफिसर क्या रहता है, तो उसके बाद जैसे हम अंदर घुसे हमको पता चला कि भाई ये साइट पे जो लोग काम करते हैं, जो भी है ना साइट के अंदर है ना जगह है, जो प्लेस है, इन्वायरमेंट है, और है ना पीपल प्लेस इन्वायरमेंट, इनका कंसेप्ट यही है कि हम तीनों को है ना हमें ना जो भी हजार्ड से जो भी है ना खतरे वाली चीज़ है इससे इनको बचाए। कि मोस्टली क्या होता है, लोग जहाँ पे काम करते हैं तो लोग ये चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते कि केमिकल यूज़ हो रहा है या फिर है ना प्रदूषण हो रहा है, कुछ प्लास्टिक का चीज़ हो रहा है या फिर आदमी काम कर रहा है ऊपर से गिर सकता है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। सबका जो एम रहता है कि सिर्फ प्रोडक्ट निकाले कि किसा है ना आउटपुट कैसा निकले, बट कोई ये जीवन के ऊपर, कोई आदमी के ऊपर, आदमी के जीवन के ऊपर, बाकी चीज़ के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, और जहाँ पे भी है ना काम चालू होता है तो उनके तरफ से है ना ये कंपलसरी रहता है कि जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन जो एक्ट है अपने इंडिया के अंदर, उसके थ्रू है ना हर जो साइट के अंदर आदमी लोग काम करते हैं वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर कंपलसरी रहता है, तो लोग ये बाईपास करते हैं। तो मुझे एक अवार्ड थी अंदर से, एक है ना अच्छा मुझे ये था कि है ना हम लोगों के लिए कुछ करें, और सब में ज़्यादा लोग है ना इस पर ध्यान नहीं देते, वर्कर्स मतलब लोग समझते कि यार छोटा कैटेगरी, ये कैटेगरी उनके ऊपर क्यों ध्यान देना है, बट उनका भी लाइफ रहता है, उनकी भी जीवन शैली रहती है, अगर हम उनके ऊपर ध्यान देंगे तो वही लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वही लोग देखेंगे तो है ना, ताजमहल भी बनाने वाले वर्कर्स ही है। तो यही चीज़ था कि है ना, हम वर्कर्स और है ना जो है अदर जो सोसाइटी है उसके लिए एक अच्छा काम करें, यही सर्च के अंदर है ना मुझे ये कंसेप्ट अच्छा लगा मुझे कि तो मैं इसके अंदर घुसाऊँ। तो इनका बेसिकली काम यही रहता है कि वर्कर्स और दूसरी चीज़ है मतलब है ना इन्वायरमेंट है, उसको प्रदूषण ना हो, वर्कर्स की जान बचे। तो इसके लिए जो जो फाइटिंग करना है कंपनी से फीडबैक, मतलब है ना ऊपर में काम कर रहा है उसको बेल्ट चाहिए, बेसिक पीपीस चाहिए, शूज़ देना चाहिए उसको, कटिंग कुछ कर रहा है उसको हैंड ग्लोव्स देना है, प्रोवाइड करना है नहीं करना है, ये कंपनी से हम झगड़ते कि भाई उसको है ना ये दो, क्यों वो लोग काम कर रहा है, ऊपर से गिर गया मर सकता है, ऊपर से गिर गया उसका हाथ पांव टूट सकता है। तो इसके लिए है ना स्पेशली डिवीजन रहता है, मतलब हर कंपनी में रहता है आजकल है ना, हर इंडस्ट्री में हर जगह कंपलसरी हो गया है कि भाई आपको है ना जो भी आदमी अंदर काम कर रहा है उसको है ना इंश्योरेंस देना है, उसको है ना जो भी इंश्योरेंस चाहिए, जो भी पॉलिसी चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए उसको। तो ये है ना आजकल पूरा कंपलसरी हो गया है। तो ये चीज़ के लिए मैं अंदर घुसा हूँ कि देखते हैं। और इसमें मेन दूसरा भी चीज़ ये था कि मोटिव ये था कि पेमेंट भी अच्छा बढ़ता है इसमें,
1: अच्छा ओके,
0: ये भी था, ऐसा नहीं कि इसमें और काम भी कम रहता है, ऐसा नहीं रहता कि ज़्यादा काम रहता है। तो वो सोच के ये किया, सिर्फ ये रहना चाहिए कि आपको है ना स्ट्रगल करने आना चाहिए, आपको फाइट करने के लिए आना चाहिए, कंपनी से आपको ये चीज़ मंग के लेने के लिए आना चाहिए। कंपनी देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता है, लेकिन आपको उसे मंगना चाहिए, आपको उसे लेने आने चाहिए। तो अगर ये लेने आता है आपको तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो, कंपनी से निकालने आना है तो आप ले सकते हो, अगर लेने नहीं आता है तो फिर मेरा तो सजेशन, हाँ मेरा तो सजेशन है कि इसमें मत घुसो कि ये चीज़ है ना आपके हित में नहीं है, फिर आप फिर वो एक स्टैचू बन के रह जाएंगे जो कुछ काम का नहीं रहेगा।
1: अच्छा, तो ये जो आपका जॉब है सेफ्टी ऑफिसर का, ये मैकेनिकल के बाद ही होता है क्या, कोई भी स्ट्रीम का मतलब ये जा सकता है स्टूडेंट?
0: बेसिकली देखो इंजीनियरिंग और है ना अदर जो डिग्रीज हम कंपैरिजन करते हैं, तो ये अदर डिग्री भी अच्छे रहते हैं, ऐसे नहीं रहते कि ख़राब रहते, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक इंजीनियरिंग का जो ये रहता है टेक्निकल नॉलेज जो आप बोलते हैं, क्यों हमारे इसमें बहुत सारे क्या रहते सेफ्टी में कि है ना बहुत सारे हिराची मेथड्स रहते हैं, हिराची मेथड्स के अंदर है ना एक है ना मेथड जो रहता है इंजीनियरिंग कंट्रोल रहता है। आपको इंजीनियरिंग आता होगा, आपको कुछ उसके बारे में नॉलेज होगा तो ये आप सजेशन दे सकते हैं। बाकी का भी चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। हिराची मेथड के अंदर क्या रहता है इंजीनियरिंग कंट्रोल में तो बोल के रहता है कि हम है ना हज़ार को कंट्रोल करने के लिए कौन सा इंजीनियरिंग तरीका यूज़ कर सकती है, कौन सा दिमाग आप लगा सकते हैं। तो ये है ना मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज रहते हैं, बड़े बड़े जो कंपनीज रहते हैं, जैसे है ना अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या फिर है ना बाकी के है ना अदर इधर के ये हो गए CBRE हो गए, या फिर दूसरे कोई ये ऑर्गेनाइजेशन हो गए बड़े, जैसा गोदरेज हो गया, गोदरेज है ना गोदरेज एंड बॉयस की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग जो भी कंपनी आ गए, या फिर है ना मैकेनिकल बेस्ड जो कंपनीज है, वहाँ पे आपको मैकेनिकली चाहिए, वहाँ पे आपको है ना अदर ऑप्शन नहीं देता है।
1: अच्छा।
0: उसमें क्लियर लिखे वाला रहता है बी मैकेनिकल, बी इज रिक्वायर्ड प्लस ADIS, ये ADIS है ना इसका एक सर्टिफिकेशन है जो सेफ्टी का एक सर्टिफिकेशन होता है, तो ये कंपलसरी है। ऑर्डर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर कुछ नहीं करते, ऑर्डर के लिए भी होता है, ऐसा नहीं कि, लेकिन फिर उसको लिए वो
1: मेरा इसलिए मैंने आपको ये पूछा था कि
0: ग्रोथ के लिए है ना इंजीनियरिंग चाहिए बेसिकली। मैं ये बोलता हूँ
1: इंजीनियरिंग का भी होगा क्योंकि बहुत सारे मैंने एल्यूमिनाई के जो इंटरव्यूज किए तो बहुत सारे मैकेनिकल होने के बाद फिर वो सॉफ्टवेयर IT इसमें वो चले गए, शायद उसका कोई कोर्स करके
0: वही
1: सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चले गए। तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में नहीं था?
0: मेरे दिमाग में सिंपल ये था कि मुझे ग्राउंड पे रहना है, ये मेरे दिमाग में था। दैट वो एक रीजन हो सकता है कि पेमेंट नहीं बढ़ गया वो लेवल में जो IT में है।
1: आपके दोस्त है कोई ऐसे?
0: है बहुत सारे लोग है कि मेरे साथ, हमारे साथ को बैच तो अभी 10 साल हो गए, तो कोई कोई बहुत सारे इसमें घुस गया है, सॉफ्टवेयर में अच्छे अच्छे इसमें है, पैकेजेस में है 24-25-30 लाख 70 लाख तक के भी पैकेज के लोग बंदे है कि अपने कॉलेज से जो पास आउट हुए इसे। बट ये है कि हर चीज का ये नहीं रहता है कि
1: लाइफ,
0: हाँ लाइफ मतलब ये नहीं चाहिए कि

0: ग्रोथ है, ऐसा हम बोल नहीं सकते कि ग्रोथ नहीं है। कोई भी चीज़ में ग्रोथ नहीं होती, ऐसा नहीं है कि हम उसको सोचते नहीं है, उसको है ना फाइंड आउट नहीं करते हैं। तो वो चक्कर में है ना हमारे बहुत सारे चीज़ रुके हैं आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। अभी ऑटोमेशंस के अंदर बहुत सारे है ना AI से कनेक्ट हो रहे हैं। मैकेनिकल इज़ फ्यूचर, अगर हम उसको AI के साथ ये करेंगे तो। क्यों, अभी रोबोटिक्स वही अब ज़माना है कि है ना उसके अंदर ग्रोथ हो रही है। अभी AI आए है तो है ना वो भी डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये सब मैकेनिकल बेस है कि आप है ना AI के लिए भी है ना जो रोबोट लगाएंगे तो उसको मैकेनिकल ही है वो। अगर उसको आप है ना AI के साथ कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ये है आगे है ना, आपको उसके अंदर ग्रोथ है सब ये है।
1: अच्छा,
0: हर फील्ड के लिए ग्रोथ रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई
1: नहीं
0: फील्ड के
1: नहीं
0: लिए
1: लेकिन
0: कम
1: हो
0: रहता है
1: सकता है।
0: का।
1: अच्छा ठीक है, एक आप पहले ऐसे थोड़े से एक कुछ गिने चुने लोगों में हो कि जो मैकेनिकल के बाद भी अच्छा करियर हो सकता है, ऐसा आप कह रहे हो। तो मित्रांनो, आपण जी चर्चा करत होती मोहसिन शेख यांच्याशी, 2014 मेकॅनिकल मध्ये पासआउट आहेत, सध्या मुंबई घनसोली येथे सेफ्टी ऑफिसर म्हणून आहेत गोदरेज अँड बॉईज कंपनीमध्ये। तो आपने आप फिर से एक बार वो 2010 से 2014 के बीच में लेके गए, आपकी डिसेंट बैच थी ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन मैकेनिकल के स्टूडेंट इतने भी खामोश रहने वाले नहीं रहते,
0: खामोश
1: कोई तो
0: नहीं,
1: झगड़ा फसाद
0: झगड़ा
1: कुछ तो।
0: फसाद हम लोग ये चीज़ में नहीं थे, ऐसा नहीं कि थे कुछ थे और कुछ नहीं थे, तो हम नहीं थे सुमे थे
1: अच्छा,
0: तो इसके लिए कुछ हुआ नहीं है।
1: हाँ,
0: बाकी
1: इलेक्ट्रॉनिक सीएससी के
0: सीएससी के आईटी
1: इलेक्ट्रॉनिक्स
0: में
1: नहीं, वो
0: हमारे एक बैच
1: डिपार्टमेंट के ज़्यादा,
0: में,
1: डिपार्टमेंट की तरफ ज़्यादा घूमना फिरना,
0: हाँ डिपार्टमेंट्स
1: ईटीसी के
0: का
1: डिपार्टमेंट की तरफ ज़्यादा घूमना, ऐसा कुछ
0: नहीं, ऐसा कुछ थे बंदे, ऐसा नहीं
1: अच्छा
0: बोलता हूँ कि नहीं थे, कुछ बंदे रहते ही है और होना भी चाहिए, वही एज है, नहीं तो अभी नहीं फिरेंगे कभी फिरेंगे। बट उतना ये नहीं था कि है ना किसी को ये करे, किसी को है ना हरासमेंट करे, किसी को ये चीज़ में नहीं थे। जो था वो सिर्फ जो टेम्परेरी बेस पे जो ये रहता है वही एक फ्लो था। बट है ना लोग है ना बहुत सही थे, ऐसा नहीं कि है ना किसी को समझा दिए, किसी को ये करे। अपने कॉलेज में कैसा था, वॉच बहुत सही था, टीचर्स लोग का जो ये था सिक्योरिटी थे, टीचर्स लोग थे, ये लोगों का वॉच बहुत सही था। वो उसके लिए वो डर के है ना कोई आगे बढ़ता नहीं
1: बढ़ता ही
0: था,
1: नहीं था। अच्छा
0: तो वो एक प्लस पॉइंट था कि कॉलेज के अंदर है ना अभी लोकल ही है, आप सर सब लोकल ही है, तो ये चीज़ के लिए किसी का डेयरिंग नहीं होता था कि भाई किसी को ये करे किसी
1: और
0: का
1: कल्चरल एक्टिविटी स्पोर्ट एक्टिविटी
0: कल्चर। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हम लोग का बैच में तो हम लोग यूनिवर्सिटी के लिए तक गए थे।
1: ओके
0: मैं बेसिकली फुटबॉल खेलता था उस टाइम पे, फुटबॉल से हम लोग का यूनिवर्सिटी टीम बना था। अच्छा, बहुत अच्छा टीम था, हमारे सीनियर्स भी थे और ये थे, तो बहुत मज़ा आया उस टाइम पे।
1: अच्छा
0: कल्चरल एक्टिविटी में हम लोग थे ऐसा
1: अच्छा
0: पार्टिसिपेट, यूनिवर्सिटीज़ जाके आए खेले। बाकी के एक्टिविटी तो होते रहे, सोलापुर में वो ये होता है अपना उस टाइम है ना सेमिनार्स होते थे तो वो अटेम्प किए, उसमें भी हमारे बहुत सारे है ना कॉलेज के बंदे है ना जीत के आए। और बाकी के एक्टिविटी में भी है ना बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट होते थे कि ये लोगों ने है ना किया है ग्रोथ। जो जो ग्रोथ करना चाहता है
1: वो
0: जिसको,
1: करेगा
0: हाँ
1: ही।
0: वो करेगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता है। अभी मेरे भी कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जिसने है ना उसका जो लक्ष्य रखा था, उसका जो है ना एम रखा था, उसका जो ड्रीम रखा था, उसके मार्ग पे वो रहा और उसके लिए उसने अभी से प्रिपरेशन की। मतलब जब इंजीनियरिंग में था, वो फर्स्ट ईयर में था ना, तब से उसको कॉन्सेप्ट क्लियर था, उसने वो ध्येय पकड़ के चलता रहा और आज वो खुद का कंपनी खड़ा किया उसने।
1: अरे वाह,
0: आज
1: अरे
0: है ना
1: वाह,
0: खुद का है ना कंपनी से है ना अच्छा लगा। ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमको एक प्राउड फील होता है, भाई ये हमारे बैच से बंदे हैं और ये लोगों ने हम काम किया है, ऐसे लोग भी है।
1: अच्छा
0: तो अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए मार्ग है।
1: अच्छा और जैसे कि आपने कहा था स्टार्टिंग में कि आपके पिताजी जो थे, आपके घर के हालात थोड़े थोड़े सोसो थे, टेलरिंग का काम करते थे, तो जब आपका ये सब अब जॉब लग गया, सब कुछ हो गया, चलो बेटा तो कम से कम टेलरिंग में नहीं आ गया, सेफ्टी में गया, क्या क्या फीलिंग क्या होती है?
0: इस समय बेस्ट फीलिंग ये रहते हैं कि आप है ना जो पिताजी से पैसे ले रहे उसके जगह आप है ना घर पे पैसे दे रहे
1: दे
0: हैं,
1: रहे हैं। हाँ
0: ये समय बेस्ट फीलिंग रहती है। ये हर जो भी

0: करने पे जाता है, जो भी काम करता है उसके लिए है ना, ये सब में प्राउड फीलिंग रहता है, प्राउड मोमेंट रहता है कि हम अपने पिताजी को है ना, मतलब पिताजी को देते नहीं है हम लोग, ये हम अलग लगता है, मतलब है ना एक उनका हम है ना कुछ फीडबैक कुछ दे रहे हैं, कुछ छोटा मोटा है ना हम ये कर रहे हैं, हम उसको कभी फेर नहीं सकते
1: बराबर।
0: ये मेरे दिमाग में पहले से है कि भाई हम पिताजी का जो कष्ट किए से, जो मेहनत किए, हम उसको कभी रिटर्न नहीं कर सकते,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हम है ना कुछ कर रहे हैं कि जिसके वजह से पिताजी को प्राउडफुल हो रहा है कि मेरा बेटा है ना कुछ कर रहा
1: कुछ
0: है,
1: कर रहा है। हाँ।
0: तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि है ना पिताजी भी आज देखते तो बहुत खुश होते सब, मतलब एक एक है फीलिंग आती है कि भाई हम जो कर रहे उसका तात्पर्य यही रहता है कि हम है ना फैमिली के लिए कुछ करें, नहीं तो कोई है ना घर छोड़ना नहीं चाहता है, जो करते सब है ना ये इसी के लिए करते हैं कि हम है ना कुछ गर्व फील
1: हाँ।
0: कराए अपने पेरेंट्स के लिए,
1: अच्छा
0: तो बहुत अच्छा मोमेंट था कि हम है ना कुछ कर पाए और पिताजी को भी गर्व है,
1: हाँ
0: इससे
1: ठीक।
0: बड़ी और कोई बात नहीं है।
1: अच्छा। और अब आगे क्या है इन फ्यूचर, जैसे कि अभी तो 10 साल हो चुके हैं आपके ये जॉब को भी सभी चीज़ों को, तो अब आने वाले 10 साल के बाद, 20 साल के बाद ऐसा कुछ सोचा हुआ है कि ऐसा कुछ करना है अलग?
0: अलग से ऐसा मैंने सोचा हूँ कि है ना भाई जो मेरी फील्ड है उसमें अपन टॉप मोस्ट जाए, इसमें है ना हमने ये सोचा है कि भाई अभी जो मैनेजर है, मेरे एग्ज़ाम्स ऑलरेडी हो गए, इंटरव्यूज़ हो गए कंपनी की तरफ से, कि है ना वो लोग है ना मुझे जोनल ये बना रहे, तो वो हिसाब से मेरे प्रिपरेशंस चालू है। ग्रोथ के लिए मैंने है ना यमी के लिए अप्लाई किया हूँ, यमी सस्टेनेबिलिटी बोल के एक है और है ना एनवायरनमेंट है, ये चीज़ के अंदर है ना मुझे आगे ये करना है। अभी मेरा जो फील्ड है उसके अंदर यही है कि भाई आपको है ना इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक है और एनवायरनमेंट है, और जो फिलवक्त यही है ना फोकस में है, यही चीज़ है कि भाई इसको पकड़ो, इसमें ग्रोथ करो, जितना हम सीखना चाहें ना उतना कम है, हमको सिर्फ है ना टाइम देना है और ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, तो भाई एक्सपीरियंस सिर्फ लेके कुछ फ़ायदा नहीं है।
1: अच्छा, तो जैसे कि आपके लाइफ में कुछ तो अप एंड डाउन्स आए होंगे, कभी ऊपर कभी नीचे रहा होगा, तो ऐसे कौन सी चीज़ थी या कौन से ऐसे गाने थे, कभी फिल्में देखने का, गाने सुनने का तो हर एक को शौक रहता है, लेकिन आपको ऐसे कौन से गाने थे या कुछ थे कि जो आपको मोटिवेट करते रहे, या क्या ऐसी चीज़ है कि जो आपको मोटिवेट करती रही?
0: मेन गाने मतलब है ना ऐसा नहीं था कि हमारे टाइम पे ये ना इंजीनियरिंग के टाइम पे है ना 3 इडियट्स मूवी आई थी,
1: अच्छा
0: तो 3 इडियट्स बहुत आइकॉनिक था, दिमाग में बैठा था कि भाई हम कुछ कर सकते हैं, एंड ये उसकी उसके गाने हम है ना मैक्सिमम अपने दिमाग में थे।
1: आज भी वही चैंटिंग हो रहे हैं गाने कैंपस में आने के बाद?
0: कैंपस में आने के बाद होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट मेरी रैली कच्ची नहीं है कि मैं है ना कुछ गा सकता हूँ।
1: हाँ, नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कौन सा गाना है जो कि दिमाग में चला, हम क्या करते हैं इंटरव्यू के बाद वो गाना प्ले कर देते हैं, ऐसा कौन सा गाना है
0: जो 3 इडियट्स में जो जिसने सुसाइड किया था, क्या नाम है उसका, झूमिया
1: शन,
0: तो वही है ना वही गाना है, वही है ना मेरे को मोटिवेट करता है, मतलब है ना खुद को ये है कि उसमें ये है कि उदास होके बैठा है आदमी और है ना खुद को है ना आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, उसको चांस चाहिए, तो ये यही है ना एक मोटिवेट करता है मेरे को गाना कि अपने को चांस चाहिए आगे बढ़ने के लिए।
1: और ऐसे लाइफ के क्या गोल्डन वर्ड्स है कि जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए समझो इंस्पिरेशन देते रहे, एक दो तीन गोल्डन वर्ड्स रहते किसी भी, कि नहीं यस मुझे आगे जाना है?
0: गोल्डन वर्ड्स के ये है कि भाई मेरे को पिताजी हमेशा बोलते थे भाई जो भी आगे बैठा है आपके ऊपर भी जो भी है, आपके ऊपर कोई भी हो, मतलब है ना आपका बॉस हो, आपका कंपनी का मैनेजर हो या कोई भी हो, वो सब इंसान ही है, कोई ऊपर से कोई देवता नहीं है जो ऊपर बैठा है, वो अगर कर सकता है
1: तो
0: उसको हाथ पाँव है, उसको भी वही है, उसको भी दिमाग उतना ही है, उतना ही ग्राम उसका दिमाग है, उसको भी हाथ उतना ही है, हाथ पाँव उतना ही है, उसको अलग से एक हाथ एक्स्ट्रा नहीं है, वो अगर कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। ये चीज़ मेरे है ना दिमाग में पहले से ही था कि भाई वो कर सकता है ना, मतलब कोई ना कोई अपन कर सकते, सिर्फ ये है कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। जब आपको वो रास्ता मिलेगा ना, आप उसे भी ऊपर जाएंगे। तो ये चीज़ मेरे को हमेशा मोटिवेट करता था। अगर मैं किसी को देखता था अरे ये कर सकता है, तो चलो भाई अपन भी कर सकते। और कोई चीज़ है ना नामुमकिन नहीं होती है लाइफ में। ये देखा हूँ कि भाई अभी अब तो सब डिजिटल वर्ल्ड है, आप सब हर चीज़ पॉसिबल है लाइफ में, कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ आपको है ना वो चीज़ के लिए ये चाहिए, गट्स चाहिए, करने के लिए गट्स चाहिए सबसे पहले, इच्छा शक्ति चाहिए, जिद्द चाहिए, और बाकी का है ना जो है वो स्टेप उठाने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि आप जो स्टेप उठाएंगे उसके बाद ही आपको है ना उसका है ना जो ये है उसका पॉजिटिव है जिसका निगेटिव है वो सब है ना आपके सामने आएगा। जब तक आप स्टेप्स नहीं उठाएंगे, खुद को है ना एक पाव उठाएंगा नहीं, तब तक आपको आगे बढ़ने के लिए ये नहीं होगा। तो यही सोचता था और इसके यही चीज़ से है ना आगे बढ़े कि भाई वो रह सकता है। और पिताजी बोलते थे कि कभी भी है ना मेहनत देखना है तो है ना अपने से जो कम कमा रहा है ना, जो गरीबी में रह के कमा रहा है जो, उसको देखो क्योंकि उसकी मेहनत ज़्यादा रहेंगी, हमेशा आपसे ज़्यादा रहेंगी। या फिर उसको देखेगा तो और मेहनत करेगा। तो वो चीज़ मेरे को मोटिवेट करती थी। अभी मैं हम लोग की भी जॉब्स की जो स्टार्टिंग रही वो भी ऐसी स्ट्रगल में रही, तो हमको पता है कि भाई जो गरीब लोग रहते थे जिसको खाने में नहीं रहता था, हम चलो हम लोग खा रहे, तो वो लोग एक वड़ा पाव एक है ना एक टाइम का खाना उसके ऊपर है ना पूरा दिन निकाल रहे और मेहनत कर रहे। हम लोग को सब मिल रहा है, हम लोग मेहनत नहीं कर रहे। तो ये लोग को देख के मोटिवेट होता था कि भाई ये लोग कर सकते, ये लोग कर रहे तो हम लोग को भी करना चाहिए। कहीं से स्टार्ट होंगे, ये चीज़ है।
1: यस,
0: और वही चीज़ मोटिवेट की।
1: यस, तो मोहसिन शेख जी, आपके पिताजी का नाम वो मैंने
0: सज्जियुद्दीन
1: जी। तो वैसे तो हमारे रेडियो के ज़्यादा सुनने वाले तो लोग तो टेलर ही ज़्यादा शायद वो भी रेडियो सुनते होंगे, तो ये आपका इंटरव्यू भी वो सुनेंगे। और बहुत खुशी हो गई कि आपने आके आपकी जितनी भी जर्नी है, क्योंकि आप पहले मतलब इंटरव्यू से पहले थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे कि यार मैं इतना बात कर सकता, आप देखिए आप लगभग 35 मिनट बात कर रहे हो। तो आपने बहुत अच्छी बातें शेयर की और आपकी जर्नी भी अच्छी रही और आप आगे भी बहुत बढ़ना चाहते हो आपके ही फील्ड में, कहीं इधर उधर नहीं घूमना चाहते हो, तो मैं उसके लिए भी मैं रेडियो तेना की ओर से आपको बहुत सारे विशेष देता हूँ।
0: थैंक यू।
1: और आप यहाँ पे आए फिर से एक बार, ऐसे ही आइए, आपकी अचीवमेंट और एक बार होने के बाद हम राह देखेंगे।
0: थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर विश।
1: आणि आपण ऐकत रहा रेडिओ तेना 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज। श्रोते हो, रेडिओ तेना ट्यून करा 90.4 FM वर। किंवा आपण अँड्रॉइड फोन किंवा ॲपल फोन वापरत असाल तर गुगल प्ले स्टोअरवर किंवा ॲप स्टोअरवर रेडिओ तेना हे ॲप उपलब्ध आहे। आपण रेडिओ गार्डनवरही रेडिओ तेना ऐकू शकता, त्यासाठी पृथ्वीच्या ग्लोबवरील उस्मानाला जर टच केलं तर आपल्याला ऐकायला येईल केवळ रेडिओ तेना। आपण http://radio.coeusmanabad.ac.in या वेबसाईटला भेट देऊन ऐकू शकता रेडिओ तेना। आपण आमच्या फेसबुक पेज आणि इंस्टाला लाईक करा, फॉलो करा। तसेच आपल्याला हा कार्यक्रम कसा वाटला ते जरूर कळवा, त्यासाठी व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 9970509 9970500। ऐकत राहा, आनंदी राहा, रेडिओ तेना 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज़।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है।

0: साथ तेरा मांगा, सबको रिजेक्ट किया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: हमको लेले नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: आधी रात है।
1: आपली पसंत आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला आरोग्य, विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा, आपला रेडिओ तेरणा। ऐकत रहा, आनंदी रहा। रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। क्रिस्टल क्लिअर आवाजासाठी डाउनलोड करा आमचा ऍप प्ले स्टोर वरून। टाइप करा रेडिओ तेरणा 90.4। रेडिओ तेरणा आता रेडिओ गार्डन वरही उपलब्ध, तसेच radio.coe usmanabad.ac.in वेबसाइट टाकूनही आपण रेडिओ तेरणा ऐकू शकता। ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। ऐकत रहा, आनंदी रहा।
2: इतना क्यों याद आ रही हो? What do you expect? ट्रेन से कूद कर लौटा हूं?

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

उठो नहीं, लेटे रहो, जो भी हुआ लेकिन तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो, लेटे रहो।

देख रही हूँ, मेरे लोग उस लड़के को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेंगे। तेरे लिए बेहतर है कि तू खुद बता दे। तेरी यही खामोशी तेरी सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। मैं तुझे उठाकर उसी जगह वापस भेज दूंगा जहां से खरीद कर लाया था एक दिन। तेरी सही जगह वही है, वहां आशिकों की कमी नहीं पड़ेगी तुझे। एक ढूंढेगी हजार मिलेंगे, और वो सब मिलके तेरा इतनी बार इस्तेमाल करेंगे कि दोबारा किसी और से इश्क करने के लायक नहीं रहेगी तू। आज से तू उसी दिन का इंतजार कर।

मैं अल्लाह से कह रही थी कि तुम्हारे अंदर ईमान जगाए, तुम्हें नास्तिक से आस्तिक बनाए। चाहे तुम उसे जिस तरह जिस शक्ल में मानो, मगर मानो जरूर। मैं तो ये चाहती हूँ कि हम दोनों मरने के बाद भी मिले जन्नत में, और जन्नत में वही लोग मिलते हैं जो खुदा को मानते हैं।

0: I'm sure इतने बड़े घर में तुम अकेले नहीं रहते होगे।
1: अकेला ही रहता हूं क्योंकि अकेला हूं
0: मैं भी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: आपली पसंत आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला, आरोग्य आणि विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा, आपला रेडिओ तेरणा। ऐकत रहा, आनंदी रहा। रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज।
3: विश्वशांतीचा महापर्व, पर्युषण पर्व, पर्युषण पर्व, पर्युषण पर्व। श्रोते हो, पर्युषण पर्व हे जैन धर्मातील महत्त्वाचं व्रत समजलं जातं। मुळातच पर्युषण या शब्दाचा अर्थ आहे मनातील सर्व विकारांचं शमन करणं, जसे की काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, वैमनस्य असे कितीतरी विकार असू शकतील। अशा विकारांपासून स्वतःला दूर करून आत्मशांती प्राप्त करून घेणे, तसेच आध्यात्मिक प्रगती साधत पर्युषण पर्वाच्या काळात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य अशा तत्वांचं पालन करणं। 10 दिवस चालणाऱ्या पर्युषण पर्वाच्या काळात दशलक्षण धर्माची उपासना केली जाते। तेव्हा या पर्युषण पर्वातील 10 दिवसांमध्ये प्रत्येक दिवशी आपण एक एक लक्षण म्हणजे धर्म कसा अंगीकारायचा याविषयी जाणून घेणार आहोत। तेव्हा आज 4था दिवस, आज आपण ऐकूयात उत्तम शौच याविषयी सौ रेखा फडकुले यांनी सांगितलेली माहिती।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: दिल में दर्द रहता है।
1: अच्छा,
0: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
1: बाप रे,
0: सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको।

0: चलो चलो घंटी बज गई, चलो चलो।
1: क्यों बिल्लू, कैसे लगा?
2: बहुत अच्छा है दुश्मन, क्या
1: अच्छा लगा ना? हाँ चल चल, जाओ जाओ जाओ। अच्छा जी, ओ टायर पंचर हो गया।
2: पैसे निकाल।
1: पहले मेरे काले से हाथ हटा, नहीं तो मैं गांव वालों को बोल दूंगा कि बुतिया खेत में चुड़ैल बन के तू ही डराती। तो मैं अब जाऊं?
2: जा।
1: थैंक यू।
2: ए, उधार रख के जा तो रहा है, लेकिन अपना नाम तो बताता जा।
1: सुना नहीं बच्चे ने क्या कहा? दुश्मन चाचा। चाचा सिर्फ बच्चे का, तेरा नहीं।

0: आ गया? क्या हुआ?
1: हुआ मेरा सर। अरे ऐसे कमीनों के घर में कौन लड़की देगा? देखना साली, कमला के लिए मैं ऐसा लड़का लेके आऊंगा कि तू भी देखती रह जाएगी।
0: ए, रहा ना आखिर ड्राइवर का ड्राइवर ही। तू क्या लड़की के दिल को भी गाड़ी का पहिया समझता है? जब एक पिंचर हो गया दूसरा लगा दिया। अरे वो दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं, लेकिन तू क्या समझेगा प्यार क्या होता है?

0: ओ फूलवती, आज टमाटर शुरू होने से पहले ही
1: रहने दो काका, रहने दो, मैं बोलता हूँ।
2: फूलवती, काका ये कहना चाहते हैं कि आज तमाशा शुरू करने से पहले ही तूने खत्म कर दिया।
3: नहीं काका जी, आज का तमाशा तो अब शुरू होने वाला है।